0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से कर, स्वामी भगवान से उतानु से कर, स्वामिनी भगवान से नवत वडिन से कर।
0: तेहिन प्यानी उन्वान से गे मरने तुत्ताने सीपत कर्मिन जीवन दायक पूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तप्य बट बुद्ध कर्म ओबाहम सिटमिन बट सेवे खरान नट अपसुदुसान वाचिन सल की मगन अपियो बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महान से गे श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागी बन अपसम शुद्धात्मन विशे निक सत्कर्णु लबन लिस अपि अवनतवा आयद सिटिमो स्वामिनी मुल्लु वही पेतर पवत्ना उबगे शुद्ध उसभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगरद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगे सभाव दयागुणेन पिरिपुन्वान्नट सलसुनु मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतिव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयानुकंपाव करे विश्वासे तबमिन नेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकंपा कल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन युबगे कमत्ते टुकल सील शुद्धवंते इंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत सा किरीमटद ओबगे महिमे वर्णा किरीमटद ओबगे पुत्र येशुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी पियाननी शुद्धात्मन हा समे क्वेड वसन्ना ऊ उपवहन सेठ सकल गौरव महिम

याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरिय तुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।